दुखी हुए कि पुत्र कमाई नहीं करता, ये दान कौन करी जाता है? कौन है बच्चा जेड़ा जुतियां की दुकान ते बहता है? कोई पैसे दे जाता है तो ठीक है, जे नहीं देता तो भी ठीक। सत्संग जिसका मन उस परमात्मा नाल लगा होवे वो माया नाल किवें जुड़ सकता है? आखो सतनाम श्री वाह। कौन है बच्चा? ये वो बच्चा है जिसका उचारिया होया ये शब्द तुसी बड़े प्यार नाल पै सुनदे हो, नाम है भगत रविदास। आखो सतनाम श्री वाह। किन्नी तड़प मन

हे रविदास इस आस से बैठा है कभी ना तेरे दर्शन हो सत्संगत जिदे मन विच इन्ना वैराग होवे ओ फिर दुनिया दे राग रंगा वल धन दौलत वल।

यमुना रविदास का ब्याह कर दी, घरवाली आएगी, स्वभाव बदल जाएगा, जिम्मेवारी को भी भगत रविदास का ब्याह कर दिता। भगत जी की शादी हो गई, पर साध संग भागा ने कर घरवाली ऐसी मिली जे भगत रविदास कहते ने दिन है ते घरवाली अगों हाथ जोड़ के कहती है सत वचन स्वामी जी दिन है। जे भगत जी कहते ने रात है ते घरवाली कहती है सत वचन रात है। भगत रविदास जे अमृत वेले 3 बजे उठते हैं ते घरवाली उन्होंने तो पहला उठ के इशनान करती है और भगत जी वास्ते पानी भर के रखती है इशनान वास्ते। स्वाहिक विचारे सात संगत नाम भी तां ही जपिया जा सकता है जे घर विच सलूक हो। हुण एक अमृत वेले उठ पवे ते दूसरा आके ना आप सौंदा है ना सानू सौण देंदा है। सवेरे कल्पना पै जाए ते उहने नाम की जपना आपको सतनाम सी एक गल याद आई। कबीर साहब घर बैठे सन, अपनी घरवाली माता लोही नूं कहण लगे लोहिए अग बाल। घरवाली कहती सत वचन अग बाल दे। फिर कबीर साहब कहते

बचा रहे हो। पर माता पिता और दुखी हो गए। अगे ते पुत्र दानी सी, अगो नू भी दानी निकली, अगो सतनाम सिरवाए। एक दिन माता पिता ने कहा, रविदास तेनू पाले और तेरा ब्याह कर दिता। सोचे असी तू कमाई करके सानू खवाएगा, पर तू ते दानी असी तेनू कमा के नहीं खवा सकते। इस तरह कर जो समान चाहिए लै लै ते वखरे हो जा। साडे वालों कमाई कर, साडे वालों दान करी। माता पिता ने वखरे आकर दिता। शाही रस्ते ते अपनी चुगली पा ली, चौपड़ी पा ली, पर अजमान ढाढा दुखी होया। मापिया ने केवल इस करके वखरे कर दिता कि मैं पैसे नहीं कमांदा, ते की दुनिया में जो सारे रिश्ते तन दौलत दे। मन दुखी होया ते अपने माधो दे नाल शब्द द्वारा इस तरह फिर भगत जी वचन करते।

में टेक ले नहीं भी देखा हुई थी, हालत ही हो गई। कई कई दिन भगत जी भूखे भी रहे पर भक्ति नहीं छड़ी। इना दिना गंगा ते बीज नक्षत्र का मेला लग्या करदा सी। एक दिन घरवाली ने कहा, भगत रविदास नूं भगत जी हजारां लोग गंगा इशनान करन जांदे ने, मेरा भी चित करदा है असीं भी गंगा इशनान करन चलीए। भगत रविदास कहण लगे, बलिए लोके सब तो वड्डा तीर्थ

हर कोई गुरमुख भी नहीं हो सकता। आप माता जी ने मर्जी कह देने हैं, आओ गुरमुख हो गई। आजकल के लोग दोहरी जिंदगी जीते, उत्तों कुछ होर ते बाहरों कुछ होर। उत्तों दिखावा इना के देखने वाला एक कवे कि ए दे वर्गा कोई गुरमुख है ही, ए दे वर्गा दानी कोई, ए दे वर्गा पुन्नी कोई। ते अंदरों अंदरों लालसा ऐसी कि जे वास चले ते सारी दुनिया लुट के खा जा। इथों तक देखे है कि लोग धर्म के नाम से भी ठगिया कर दी, थोड़ा जहा दान पुन कर दिता लोगों नु दिखाण वास्ते ते बाकी सारा कुछ आप सामभ। वड्डिया वड्डिया उगराइया भी होंदिया, थोड़ा जहा लोग लगांदे ने धर्म के नाम से ते बाकी आप सामभ लैंदे। धार्मिक स्थानां दा भी हाल ते धार्मिक

पगजी ने मुंह परले पासे कीता त्यो महात्मा बैठे बैठे आलोक हो गए। पगजी कहंदे ने उधर ते कुछ भी नहीं, जब सामने देखे त्यो महात्मा आलोक हो चुके। हुण मन वैराग नाल भरे है, ओए मना ओ आप तेरी चुकी विच आया पर तू पहचान ना सके। मन वैराग नाल भरे आ ते भगत रविदास जी फिर ए

जिस दिन महात्मा गए उस दिन तू भगत जी अमृत वेले जद उठते अपना आसन झाड़ते ने पांच सोने दिया मोहरा निकल दिया उन्हां मोहरा नू ठीकरियां मिट्टी समझ के एक पासे सुट देते जद मोहरा का

पंखे कहते ने सोने, जेड़े सिर ते कुंडलां वाले वाल बना दे, स्वार स्वार के पगा बन दे, ना सिर रहना है ते ना ही ए शरीर रहना है।

पूजे मंदिर सोहना घर सुंदर नारी सोहना रूप सोहनी कारवाई इस शब्द को यह ना समझना कि दुनिया तिया पुत्र घर बार छड़ के बह जाइए नहीं बाणी यह कहती है कि सब कुछ है पर इस सब कुछ ना समझ क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का नाम ये चीजा ते कदी भी तेरा साथ छड़ जाणगियां पर परमात्मा वो कदी साथ नहीं छड़ना इन चीजा विच रह के जरा सिमरन कर

मायना ने के शब्द पूरा पड़ी शब्द सुने राणी का अता गुस्सा ते जांदा रे ते फिर राणी ने कहा चल भाई कुछ ब्राह्मण आए ने बनारस तो कहंदे ने तू चमार नु गुरु बनाए राणी कहने लगी चलो मेरे नाल दरबार आके उन्हां पंडितां नूं कहा जिन्नी चुक सको उन्नी धन दौलत दे आगे सच दसो सच्चा भगत कौन है आए माया वास्ते सन जद माया मिली ते जिहड़े पहला निंदिया करदे सन ओही कहन लग पए भगत रविदास वर्गा ते भगत ही कोई नहीं आखो सतनाम सिंह है माया जी मिल गई। खैर गल कोई भी होई असर यह होया कि राणा भी श्रद्धालु बन गए भगत जी ने चितौड़ बुलाया कई दिन सत्संग होता रहा और अज आखिरी दिन बड़ा वड्डा पंडाल लगा राणी का सदा ते फिर कौन ना आवे हजारां लोग पंडाल विच बैठे।

कि मैं बड़ा ऊंचा, मैं तो हमेशा ये भी कहना कि मैं बहुत नीवा हूं, मेरा बहन उठना भी नीवियां देना पर

साहब सच्चे पातशाह दी पावन बाणी साहब गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश कीती जिथे सारिया भगतां नूं सन्मानिया उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करते ने, कहंदे ने हे प्रभु ए संसार एक समुंदर है, ते समुंदर विच कहंदे ने जदों देवत्यां ने समुंदर नूं रिड़किया ते 14 रतन कढे, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पानी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ए संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करदे ने, कहंदे ने हे मालक

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

भक्ति कर, उनु याद कर। परमेश्वर यारा दिए जिंदु होइए पदस पुनीता, बाहर चलिया करन तप। पांच साल दा छोटा जिया बच्चा कहंदे ने, सतगुरु कहंदे ने जे मालिक नु मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। एदे विच को मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नु पुछे, छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने, अजकल ते ताइया ताइया तिना तिना सालां दे दाखल करवा दिते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नु किसे ने पुछया भी तेरा धर्म केड़ा है, तेरी जात केड़ी है, तेरी गोत केड़ी है। ना, आपस विच प्यार नाल हसते ने खेड़दे ने। सतगुरु कहंदे ने जे रब नु मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीस तपगी साधे, लाख जोगिस करते जोगा, लाख पोगिस भोगे भोग, तेरा अंत न पारा, पारिया तेरा अंत न पारा।

रंग के फरंगाबाद, बंग के बंगाली, फरंग के फरंगाबाद, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारा वारिया। रो के रुगेले मग देश के मंगेले भी, बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालते हैं, गोखा गुन गावे, गोखा गुन गावे, गुन गावे, गुन

एक प्रकरण चल रहा है यो 2004 विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा 400 साल प्रकाश दिवस आ रहा है उनु समर्पित 6 विशेषताएं गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां पर एंड नहीं समुद्र दे किनारे कन्नां दी कोई होर चुभी मारे होर कढ़े

की चौपी बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम कावो आप हाथे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख स्वै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब एरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुनते पाऊं

जब उधर करा कर तारा पर जा दर्द तब दे अपारा जब आकर कठो कबू तुम मैं मिलत दे तर सबू जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार जलम आत अनिल अनाथ असम ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमान महामूढ़।

आप अपनी बुद्ध है जेती पर्ण भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिजा प्रथम संसारा एक के रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा अंड जे रज सेत जकीनी उत्पुछ खान बहु रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो संकरे कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव आ जुगा स्वरूप स्वयंपव अमृत छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो।

जे आस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दोख तह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरष्ट रहे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो वृद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छा छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवार काल फास्ते तय उबारा जिन्नर नाम तहारो कहा

नानक दे घर कोई भी जावे किसे भी जात दा किसे भी मजहब दा ओ उन्नू गल ना लगांदी एक आई सिख गुरु साहब दे दर्शन करन वास्ते तुर पिया इहदे कोल तीन पैसे सन ओ पल्ले बन लए जिथे गुरु साहबां दे बादशाह जहांगीर दे तंबू लगे सन

तीन पैसे पल्लियों खोल के हाथ विच फड़ ले नी। जहांगीर अपने पलंग ते बैठे कोल एदी बेगम नूर जहां बैठी। तंबू च पैर पाया पर मन नू खिच ना पई। हुण पग जहांगीर दे सिर ते भी है कलगी भी लगी।

हाथ जोड़ के कहन लगा, सच्चे पातशाह मेरा जन्म मरण स्वार दे। जहांगीर हैरान होके इस काई दा मुंह देखन लग पया, ते नाले किया मैं ते बादशाह हां हिंदुस्तान दा, जन्म मरण मैं नहीं सवार सकदा, हां जे तू कवें हेरे ज्वारात महल माड़ियां

बस जन्म मरण सवार दे। जहांगीर कहन लगा जन्म मरण सवारना मेरे हाथ नहीं, जन्म मरण सवारन वाला दूसरे तंबू विच है, मेरे कोलों हाथी घोड़े मांग हीरे ज्वारात मांग जो मैं दे सकना। ओकाई कहन लगा मैनू माया नहीं चाहिए, मैनू ते परमेश्वर दी मेर दी निगाह चाहिए। ते वापस मुड़ पे तंबू दे बार आया, अचानक ख्याल आया एक आई सिख वापस मुड़िया जहांगीर दे कोल आया, जेड़े तीन पैसे रख के मथा टेकिया सी वो तीन पैसे चुप के ते फिर बाहर निकल गया।

दुनिया मेरे को डरती है कि मैं बादशाह, पर वो डरते ने जिहड़े खुशामदी ने। जहांगीर सोचता पे उधरों सिख दूसरे तंबू वाल तुर पे।

पैर पाया, मन खिंचया गया। क्यों? महापुरुषां नूं मिलिए तां मन जिहड़ा है वैराग विच आ जांदा है, श्रद्धा विच आ जांदा है, किस दुनियावी

गर्म कपड़ा भी कोल कोई नहीं, पर फिर भी मन ना डोल रहे है ते ना ही मन डिगा होया। क्यों के जेड़े उच्चे होंदे ने हमेशा उच्चे रहंदे ने।

मौत तो डर नहीं लगता, रोना इस करके आ गया है कि दुनिया विच मैं पहला आया सी, तू मेरे बाद। मेरा हक बनदा है, पहला मैं शहीद होवां।

कि जिवें हुणे ही उठ पैणा है, लम्मे पए ने, अखां बंद ने, किन्नियां दिनां दे बाद अज लम्मे पए ने, सत दिन हो गए ने इशनान कीते आ, सारा समा तैयारी विच लड़ाई दे विच लंघिया,

मैं भी तुहाडे नाल प्यार करना, पर मैं उस बादशाह दे अगे सिर नहीं झुकाना। हार मान लवा, अपनी पग झुका दे एक बादशाह दे अगे, सुलाह कर लवा ये कह के कि मैं हार गया, पर मैं हारिया नहीं। मेरे पुत्र शहीद हो गए, कोई सिख मेरे कोल नहीं, घोड़ा भी मेरे कोल नहीं सवारी करने वास्ते, पर फिर भी मैं हार नहीं मन्नी ते ना ही मननी। क्यों? जिसनू तुसी अल्लाह कहंदे हो, कोई उसनू अल्लाह कहंदा है, कोई कुछ कहंदा है, वो अकाल पुरख वो मेरे नाल है, सच मेरे पल्ले है। मैं हारिया नहीं, ना मैं हार मननी, ना मैं पग चुकानी, ते ना ही सहबा ने वो पग चुकन दिती। आओ भाई, गुरु साहब जी कहंदे ने सिर चुकाना है अकाल पुरख अगे।

हल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगी दर पाछा काल दी गति अगात कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीण लई, ज्यों पानी पीण लगदा तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई। ते ज्यों इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखा है कि कबीर एक मरनते दोए मुए, दोए मरनते चार, चार मरनते शै मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। जो निशाना मारिया मिर्गनी नू ता मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होन वाला सी क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नू दस्या, शिकारी नू दस्या ते शिकारी ने झट तलवार कढ़ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड़ गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरन ते चार, हुण चार हो गए। इना चौवां दे मरने ते दो होर मर गए, शिकारी दी घर वाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, वो भी उथे ही टकरा मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन। ए शे दी गिनती कीती है बाणी दे विच, मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ए चारे पुरख हन, शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ए दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया ता अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई, ते इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना उस जगह तो सप निकलिया, सप ने डंग मारिया ते शिकारी ने झट तलवार मार के
ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸ਼ਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

जियो मैले बहरों निर्मल गली असी चंगिया जियो मैले बहरों निर्मल

सो अंत सो बहर अनंत कटकट व्याप रहा भगवंत तन महे आकाश प्यार सर्व लोक पूर्ण।

तू अपना बिरध पछाणिया उना नाम जपिया ते तू उना दी बां फड़ ले। जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी पैज रखी, जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी सब थावे रखिया कीती। जिमें उना दी पैज रखी जिमें उना दी रखिया कीती जिमें उना दी बां फड़ी, हे बाबा जी अज साड़ी भी फड़ लो। साध संगत बोलो श्री वाहे। दासी सुत जन बिदर सुदामा, दासी दा सुत बिदर ते फिर सुदामा, अत गरीब सुदामा सारी दुनिया दा दलिदर इस दे कर। बाल बच्चा टुकर खान नू मंगदा बिचारे रो के रात नू भुखे सौ जांदे हन, ते सुतियां बच्चियां नू वेख के माता पिता दियां आही निकलदियां हन। ए बदकिस्मत बच्चे किसे होर दे कर जमदे, ए साडे कर आन जमे, असी एडे निकरमे इन्हां नू पाल पोस भी नहीं सकदे। बेचारे टुकर मंगदे सौ जांदे हन, उठदे हन तां मुड़ टुकर मंगदे हन, पर रोटी कित्थों जुड़े। हर वेले विरलापदे हन पर आखे रोजी रोटी कित्थों जुड़े, ओ भगवान दा दिता सराफ किधर जाए। जो भगवान कृष्ण महाराज ने एक बार

घरवाली दी कन्नी सरोत पई। एक दिन आंधी है सुनिए भगवान सानू भुल गए सन। सुदामे ने रो के आखिया वो सानू भुले नहीं। आखिया की सबूत है? आखिया भुलदा उन्होंने है जो उसनू भुला देंदे। सात संगत बोलो श्री वाह। कहन लगी जे सानू ओ ना भुल दे ते असी अज एडे गरीब ना हुंदे। इतनी गरीबी साडे घर विच ना हुंदी। ता सुदामे नूं ओ दिन याद आ गए जिस दिन भगवान कृष्ण ते सुदामा गुरु संदीपन पास पढ़दे सन आश्रम विच। पढ़दे सन ते गुरुदेव दी सेवा करदे सन। जिवें आखिया सेवा करनी सारी नाले पढ़ना ते गुरुदेव दी सेवा करनी। भाग उन्हां दे जागदे हन जिन्हां ने सेवा कीती है। उन्हां दे पुन्नां नूं भाग लगदे हन जिन्हां ने सेवा कमाई है। ते जिसने गुरु नानक दे घर नूं अपना घर जान के सेवा कीती ओह गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इन्हां ने अपने गुरुदेव दी सेवा कीती। एक दिन शामा पईआं मां ने आख्या बच्चो लकड़ा लंगर विच हैन नहीं। भगवान चट तैयार हो गए मां जी हुणे ले आए। सुदामे ने आख्या मैं भी नाल चलदा।

हाथ पा के किसी शह का पक्का मारिया तो चटकुता सुदामा दबकिया रहा। फिर जिस वेले भुख लगी हाथ पाया छोले कड़े ते पक्का मारिया कड़क कड़क दी आवाज आई। भगवान ने आख्या सुदामिया भई कुछ ता खारे सचो सच दस दे मैं तेरे कोल वंडदा नहीं।

आए इते ना किते दिन खोए इन्हें दिन किथे रहे। रुक्मणी रात का सोने चांदी दिया गागरा फर के ले आई। जिसले चरण धोन लगे आओ सखा तू पाए महादुख आए इते ना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दिशा करुणा करके करुणा निद रोए। नहीं पात्र पानी को हाथ छोयो बस नैनन के जल से पग धो। रुक्मणी राज का जल लेके खलोतियां रहिया नैनन के जल से पग धोए। भगवान कृष्ण ने अपने सोने नैना दे पानी दे नाल सुदामे दे पैर धो दे। फिर आखन लगे सुदामे आ सुने अभी तेरा विवाह हो गए हाँ महाराज बाल बच्चे भी हैं सुखी हम थोड़ी कृपा है। लगे सुदामिया जिसले आन लगा सा भाभी ने कुछ खान वास्ते दिता नहीं मेरे वास्ते कुछ ले आया नहीं। ओ छोटी जी पोटली जो कछ विच मारी हुई सी चौलह दी जो छुपाई बैठा सी सुदामा। आखन लगे सुदामिया कुछ दिता नहीं चुप रहे। अगे होके भगवान कृष्ण ने वो चावलों की पोटली जिसले कड़ी आख्या सुदामिया अगे वखरे छोले खादे सन। वो पोटली खोली भगवान कृष्ण महाराज ने ते जिसले मारिया फका ते आखन लगे बड़े मिठे। सत्संग बोलो श्री वाह। सजे खबे रुक्मणी राधिका ने हाथ फड़ ले भगवान कच्चे हन पेट विच दर्द करनगे। आखन लगे नहीं वही ये भगत दा प्रसाद भगत दा प्रसाद होवे सही उस विच कोई अनोखा स्वाद हुंदा है ये मेरे भगत दा प्रसाद है। कुछ दिन सुदामा भगवान कृष्ण महाराज दे कोल रहा बड़ा प्यार की कथा वार्ता कीतियां दुख सुख फोले। एक दिन सुदामे ने बेनती कीती भगवान हुण आ गया बख्श बड़े दिन हो गए इत्थे रहिंदिया हुण घर जावां वापस बाल बच्चा उड़ीकदा होवेगा। कहण लगे अच्छा कुछ दिन रहो भाई सुदामे अजे साडा दिल नहीं भरे आ पुराना प्यार चेते आ गए जो बचपन च कठे रह के समय गुजारे सन। ओ दिन जड़े कठियां गुजारे सन ओ दिन नहीं भूलते सुदामिया उना दिना दी ए दिन याद हन इस करके कुछ दिन ता रहो। सुदामे ने हाथ चा जोड़े भगवान हुण आ गया बख्श ते कहण लगे अच्छा सुदामिया चल फिर तैनू कुछ दूर तक पहुंचाओ। ते सुदामा मन विच पिया सोचदा भी प्यार ता बड़ा कीता है पता नहीं की कुछ बख्श वड़िया दा काम है दान देना छुपा के देना होछिया दा काम है दान देना दिखा के देना। आखिया वड़े लोग हन शायद कुछ छुपा के देना चाहते होण भी प्यार तो बड़ा कीता है। जिस वेले बाहर आए सुदामे नूं छड़न वास्ते कुट गल वखड़ी पाई सुदामिया फिर भी आ। सुदामा मन विच पिया सोचदा भी दिता तो कुछ नहीं बस गली बाती प्यार बड़ा कीता पर कुछ दे दिंदे घरवाली नूं की मुंह जाके दिखावांगा भी मित्र दे कोल गया सा भई उस मित्र दे कोल जेड़ा राजा जिस दे बूहे ते राजे महाराजे नच रगड़दे हन ओ की आखेगी ओदे द्वार तो तू खाली आ गयो तेनू कुछ ना मिले। ए मन विच पिया सोचदा ही सी इसे कुटगल वकड़ी पाई ते आखन लगे सुदामिया मुड़ फेर आवी। पुठे पैरी सुदामा तुरिया कुछ दूर तो जाके जिसले सिद्धी पैरी होया ते सुदामे ने आखिया चंगे एस जमाने दे यार जारो चंगे एस जमाने दे यार जारो जेड़े हाल आए मुड़े जामदे हां केड़ा बख्श दिता सानू माल यार हथों चौल भी दे गवा बैठे अजड़े कुछ कुछ चौल सन वह भी भुखा खा गए
जे ना खांदा ते असी एक डंग उबाल के खा लेंदे साडे बाल बच्चे दा गुजारा हो जांदा। पर ओ भी खा गए कुछ ना बख्शे। बड़ा निराश होया सुदामा। मन विच चोरदा जिस वेले घर वापस परतिया ते गली विच आया ते की डिठा भी जिथे उसकी चुगी सी उथे सोने का महल खलोता। सतसंग बोलो श्री वाहे। किसे नु पुछदा क्यों भई इथे तां सुदामे की चुगी सी। मैं आख्या सुदामिया इथे तेरा ही महल है ये सोने का मंदिर। हैरान पिया होवे सुदामा भी ये किवें बन गया सोने का। जा अंदर वड़िया घर वाली आई पैरी मथा टेकिया। सुदामे ने आख्या आ सोने दा मंदिर। उसते भी नेत्र बार आए ते आख दी है स्वामी मैं आख्या सी ना एक वारी भगवान कृष्ण महाराज दे कोल जरूर जा साडा दलिद्र कटिया जाएगा साडी गरीबी कटी जाएगी। आ जो कुछ पै वेख दे हो सोने दा मंदिर अंदर पदार्थां दा ढेर लगा हो ये सब कृपा भगवान दी है ये सब बख्शिश उस दी है। तको ना सोने दा मंदर कर दी हालत नू तको ना कितने पदार्थां दा ढेर लगा होए ते मुड़ सुदामे दे भी नेत्र बार आए। मैं मन विच की सोचदा पिया सां ते भगवान ने मेरे नाल की कीती। मैं की जानदा सां कि तुहाडी इतनी कृपा है कि तुसी चाहो ते एक फुरने दे अंदर ये सोने दा महल उसार सकदे। भाई साहब आखदे पुछे कुशल प्यार कर गुर सेवा दी कथा सुनाए लैके तंदुल चब्यन विदा करे अगे पहुंचाए चार पदार्थ संकुंच पठाए। अज भगवान कृष्ण महाराज की कृपा दा सदका सुदामे नू चार पदार्थां दी प्राप्त हो गई। जिवें बाणी विच आख्या है चार पदार्थ जे कोई मांगे साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए होमे छोरे। आखे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरणी। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जस। जिन्हां ने गुरु घर दी सेवा कीती है भई प्यार दे नाल मन करके पर उपकार दा जीवन जीवे है उन्हां नूं साई ने बख्शिशां कीतियां रहमतां कीतियां ते जिन्हां ने तेरा नाम

자신의지요. ए राग आप श्रवण कर रहे हो हूं गौड़ी चेती गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का राग है और कबीर साहब ने भी इस राग विच ही कृपा की है। बड़े प्यार नाल गौड़ी चेती गुरु ग्रंथ साहिब का राग है, बड़े प्यार नाल सुनो और जो इसका ताल है वह 15 मात्रा है।

कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। वट एवर यू डिजायर यू शैल रिसीव दैट रिवॉर्ड एंड यू शैल नॉट बी अफ्लिक्टेड बाय पेन एनी लॉन्गर। काचे भांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। ही क्रिएट्स एंड अडॉर्न्स द अर्थन वेसल्स, ही इन्फ्यूजेस हिज लाइट विद इन देम। जैसा लिख्त लिखिया तुर करते, हम तैसी किर्त कमाई। एज इज द डेस्टिनी प्री ऑर्डेन्ड बाय द क्रिएटर, सो आर द डीड्स वी डू। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना। ही बिलीव्स द माइंड एंड बॉडी आर ऑल हिज ओन, दैट्स द कॉज ऑफ हिज कमिंग एंड गोइंग। जिन दिया सो चित ना आवे, मोहे अंत लुपटाना। ही डज नॉट थिंक ऑफ द वन हु गेव दीज थिंग्स, ही इज ब्लाइंड एंड टैंगल्ड इन इमोशनल अटैचमेंट्स। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपार। वन हु नोज दैट गॉड क्रिएटेड हिम रीच इज द इनकम्पेरेबल मैंशन ऑफ द लॉर्ड्स प्रेजेंस। भगत करी हर के गुण गामा, नानक दास तुम्हारा। वर्शिपिंग द लॉर्ड आई सिंग हिज ग्लोरियस प्रेजेस, नानक इज योर स्लेव। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचार।